0: तुम आंजे नेंगे तो ए बरम मुहिम का में आ इने तुम वेलन जे नेंगे तो कोमे मिय फेरना सिने तुम वेलन जे
1: ने सदगत के बुने न तो
0: आ इने तुम वेल म के सदगत तेंगे तो मेत के मामलो है के कुरे दान थाले में तो नगो नतीजा हो दा जवान के वेदन में दायरा शगर करे वे ने की ने है मी अलम के मेत के मामलो की और मंग मेत के फरतन बावरे को तो मि हर गुल है मेरे माहिल
1: अस्सलाम वालेकुम माहिल
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू
1: माहिल की रे हाल हुआ
2: अल्हम्दुलिल्लाह करो ते को के ने
1: अल्हम्दुलिल्लाह मिकोलवस वारांगल वार बाजर है ना कह देंगे
2: मिकोलवस हम बाद जोड़ है तो ना कह दे
0: माहिल क्या है साबित बोले
2: नहीं तिमर अपुस
0: था तोल अनंग अनंग को तो तिया तोल क्या नमक ही कबा कोल मर्डर लो उत्तर बड़ी तो देहं इंडिया तो वाकी बोरी है
2: क्या
0: कौन कोल मर्डर लो उत्तर तो देखो ना क्या आता कोल मर्डर लो दो क्या अहम बने दो इंगा मौल यंग करें दमा माहिल
2: आदे
0: थावली मेरे को तो रगोर नतीजा होता जुवान ये तो एक दिन किवा दिन मुझे दायरा मैं शागोर करेंगे न किहने हाँ दागने हैं जेमी आलमेंगे मैं तो मौल के कोबा ख्याल लगे
2: किवा दिन मुझे दायरा शागोर को कुरु
0: अने यहाँ मैं
2: आगुहे को वाक कि वाम मध्य आसु तो दिवेलारे तें एक सोम ऐडा शॉग ऐडा इंग ऐबा मुद्दर्दिस बाबा की वगैन हिंदा ऐडा तकन बदे ए रीज़न नक विदाने मुद मिहार के कुडिंग केवाय दम के दायरे दुर्दम केवाय दम देन मुके दायरा दो कुल्ला सब बकव गिन बदे केवाय दम के दायरा मिसाल का स्कूल तो को केवाय दम को बदल का बाइक पुडिंग अब केवाय द ट्यूशन में से बजाते ऐ आसु स्कूल लिबे लाड़ी अपने बड़ा ट्यूशन लिबे लाड़ी जिन्हें में फन का ऐहन दायरा का वो को कुन मफ़ाहो निबे मुस्लिमों को तो ट्यूशन देने में एमिहोन ना निबे मुसार इतने वक्त में बदे कम को स्कूल का केवाय जा मदर ले सुनना दे मुसार एमिहोन को आमासे कट्टा बड़ा आसुवाना मधु ऐ ऐस सब बकव जान में मैं पैसा मतलब मैं सैलरी हम है वो बोल रहा कि सैलरी बड़ो को देने में की कुड़े विद्याने वाला मुहिम मुकम देंगा दे हमारे में मिहार के जेल का कोई ना किया जो ना सहेत चले मुं ने ऐसे वाम महीन मौका में दें ए देखें तो मायगर को तेरे का पाग कर देना
0: ओ एम वी मैं मालिया मैं अने माली ने तक का मुसार रंगलो करूँगा दें एक इतरुं मैं कौन कम कहती बोले
2: दें ये मैं बोले मैं सक इल मुगन ना जो मुग महीन मौका
0: इल मुगन इतने महीन मौका को देना बोले दें ಮಾಲಿ ಇನಾಯತ್ತಂಗಳು ಕೊರಂಗ್ ಇಲ್ಮು ಉಂಗನಾ ದಿನ ಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಮ ಬೇಗತ್ತು ಇತ್ತರ ಮಾಲುಮಾತ್ ಕುದಿನ ದೇಶ

0: आदमी हर गडिंग हगड अशारमेट में दिवे राज्य गर और मगन तने बाज जरे हंदन में तो के प्रोग्राम गाल में वाह दक्का द मगन द मावदो की तवदी में गतो रंगल नतीजा हो द जवानो के आदन में दायरा शगर कर बेने किने है हते खबर कुरिन और में द बेफल का वाह दक बेफल के और मगे हंतरी अन बेफल के तवदी में दायरा गम वर फुन्ना बोस वर तजुर्बा कार बेफल आदे डॉक्टर अब्दुल रशीद वरगिन कंत तक और में ना हम बदल द वाह देख हसो गत टीचर में दायरा गिरमट का कुरे विदान
1: IKEA presents
2: Bajor Henry.
3: දෙහස් තිම්මනාහරු එම්.ඒ. ඩොක්ටරකා ඔප්ටොමෙට්‍රිස්ටකා හීවාගේ කමායකු මසක්කතුග හරකෑ තෙරිවානේ කුඩ ටීමකායකු පෙෂිමි දතුරකි රාජ්‍යයක ලොලුගේ ෆරවා ෆෝරුකොද්දින්මුගේ දායිරාය ඉංගිලාබී පදල්තකේ ගෙනුහි දතුරෙ ලොලුගේ ෆරවා දිනුගේ දායිරායින් මී ගවමුගේ එම්.ඒ. ගින කස්ටමරුන් ඉක්තියාර් කුරා එම්.ඒ. මක්පූල් නමක අයිකයා මිහාරුමි වනි වෙෆා

0: ऐसे दुश्मन।
1: दुनिया के हतरु बितु
2: राचेगे उतुरा देखुनु
1: खबरा मौलूमात
2: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस गडीरु
1: दिवेहि राज्येके अडु
2: एंगा सतस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: गडी मेंदुर फहु तिंगडी 30 मिनट मी दिवेहि राज्ये गडु

0: miharu gadi miwani egar gadi hem minichinga fa diveraje gadun mi gadi ga kuri mi gendani miyadu kihine mi sho ga algun meng hama hivol dibe kala baskol taka iki ga hama kuri mi dani egotun a furtama sama baskol ka mi jehilani
1: kadu ge raal ta kitem me gadavi namais mayus nu me hunganu ge hifatta fe mihekan amang asseri ka devene माने की दीरियों में के दातिता का कोरियम इतना अंचे होने से हिवर दोनों को मस्से के कॉफी नमक कामियाबी हमें वासिल हुए बने
0: मिफ़ा द बस कोल्ट आर्गन में मिशोगा हम गेनेस देना शोगा बैबर माम बेनु वा फराता कंग ए फुर्सत है बे पेसम ए आमे देर कोवस अनानोट कोल दे बने DRA मि पेजा मैसेज करो मुंगे दानी पीएसएम ए आमे देर को मे गेतरुं हम आर्गन में के नंबर गुला लागेन वेस अनानोट कोल दे बने
1: नंबर के 3 3 4 सुमें है कोबा समा मियादु कीने
0: मियादु हम बेस्ट सते का के दो है मिंगे
1: दिहे कुन सते के दे
0: सते के कुन सते के दे एक हम दिहे कुन दे ना इंगे हम दिहे वार रंगल दिय दो है हम कुरम बेनु हुरी हा कम तें समा कुरा कम की कमिसर का दे आदि नुली उने से सम कमिसर का सिकुंडी तेरे का हम आमी दुस रावा लंग हम कोम में दुवा हक वेस मी मी हेन मी वेन कांत तक के कुरानी माद माया मी वेन कांत तक के कोफे बहटानी एक हाल गोतक हम रावा ल दुस सम
1: एम हेगा मी फार मुनीजा के दोस्त ये कीने तो बाला अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: मुनीजा में तो कीने
2: इरा तो पुरे हां वरस सारी दुवे के गुनाने
1: कीने दोस्त दियै
2: दोस्तियै वरन हिं हम जेहि वरन उफा वेरी को आइलाया एकी हम वर सारी कोसे बने वेन
0: मुनी कोबा कीने मिरे मी उणेनी मूसु
2: मौसम इस बार साड़ी हम बारिश चहे मिलेगा
0: कामे नेता रावा फमी यहाँ हिग्गे हम रहे का मेरे एकार जगह कमेंगे
2: मेरे नितन रेडी है ये मोहनी
0: नितन रेडी का तो तेरे आ मुनिया ने कहा मैं उड़ने में स्टूटी का भी यादो
2: नहीं ना दे
0: आ हम भी मतलब हिग्गे हम को दोस्त आने था दो ऐहम भी मतलब मिया तो हम गया हम इस वाला रंगला दिया कम हमी बाला नहीं मुनी अब इस वाला का शेड्यूल देंगा दागे नूनिया एक आलोग तक तक मी दुवस वेतु कुराने गोए मी कंडा डालन कीने
2: हम अने ना ऐसा का मेरे निदुमो के कुरिं मातम कुरंग हुई कंटक्टा अने मी कंटक्टा का इतने विष्णा पमे अने मेरे मिनी दानी देंगा हम हिंदू थे दुआ को तब देंगा हम इधर के कंटक तंगे रखा रावा लाफ़ होरी में वाला फ़ासे हाँ दें को निम्मा लंदो इधर
0: आ एहम वाला फ़ासे हवे आस्तु दो
1: देंगे वी म रेगा मी विष्णाल कंकं मिये दु को निम्मा लंदो
2: हासिल हासिल
0: कुरम बेनु भी हुरी हाँ कमें दो
2: कुरम बेनु भी हुरी हाँ कमें नहीं हमें मावरा साली तम्य दे तो हे दी एक्ची ऐसा मां गेन में ना हम खामु दिया हुरी हाँ
0: ए दे मरंग फावरी कमें दो
2: असलो
0: ए हाँ मसाका तुम भी अमी केक के नहीं एक्चिंगे
2: ये लोनों का दानु वे अने एक्ची अने तेरी दुन लोगन ना वा हुरी हाँ कमें निम्मा नुरे संग अने असलो गे कक्का आंखे ना तवरा बोर्ड हिंग हमें जो में केक
0: असलो वेस आ केक कुमा साफ कुरुमा एक्ची दो मा इस्तीर कुरुमा मिकाला कंका मके हम वागुतुम वागुता कोल्ला फा बेहेट्टी मा ए दुवा हकं हम वरा फसे हवा कंका दो
2: वरा फसे हवा ना
1: मुनी दें दिहे कुं दुवस में रेट कुरेन्या कितके देनी में तो
2: दिहे कुं दिहे
1: दिहे कुं हम दिहे तो
2: कुरेरे दिहे कुं की हावरे बुने मुनी मुनी सते कं सते के दिहे मुनी मा
1: आ दिहे कुं सते के मुनी
0: मा हाँ
2: मैं मेरे वरा हांदां कोगे मेरी है मते
0: सते के हमें नुदान दो
1: आ
0: एहम विम कोबा मुनी कों कहले लवें अडवा हाला ही तुंती हीरी
2: मुनी ये दिन लवे पिता
0: मुनी एदुनु लावा एबो एकम वानी इंगे
2: मेलेचाम एलावा हम मुनी फिरिमे हा मेलावा हासा कोल्लान
1: एहेमे मुनी के हासलावा मुनी शा मुनी के फिरिमे हाय मेति
0: देखु दिन एहेमे अडवा हाला
2: आदे
0: वरम वेदुमा सदा मुनी वाकी वेला ने लव जहा दे वर बड शुक्रिया
2: उपावे बाजरे देगना
0: सैंडन गुड नाइट मुनी इंगे
2: आदे बाय

0: हंगार।
1: मी दिवी राज्य गाड़ गयो फेद तुम्हें
2: कोम्मे उमुरका
3: कोम्मे फांतियका
2: कोम्मे गिंतियका दिवही राज्य के अड़ इंहा सतर से कसाड़ी स्नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डी हनोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: राज्य राज्य बेरु के फन्नानुंगे एम्मे फाहुगे मसक्के तका दायरागे शौकुवेरी खबर तकाएको
0: फिल्मी दुनिये
1: सिनेमा तकु सीरीज तकु आदि फिल्म तकु
5: इकमिंग हन्न के कन्ने कुनुवान
6: अनु माफ करे कमना
7: फरी कमना जाना इवय दीवाना
4: फिल्मी फन्नानुना गुळुहुरी खबर तक
0: OTT platform tauge series taka kuru film takuge wahakata
3: divai rajye gadu munufuhi film ge dairaya filmi ekeki khabaru ta genis tinuma
0: filmi duniye honir duhoge menduru kuri 11 kadi fanara
4: enghas 42 ka 40 nuay kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band
0: hama ekani divai rajye gadu
3: राज्य के कोम में हिसाबे घोरी के बस एवज आगे देखो मकानों ला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाड़ो हाला बलालुम फंसे हैं गोते
8: पीएसएम एआर
9: दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो आदि दिवे ही एफएम बस आड़ो हाल वे ने
3: टीवीएम यस टीवी आदि पीएसएम न्यूज़ इस बलाले में
8: पीएसएम एआर
9: आईओएस आदि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करे वे ने
3: पीएसएम एआर
9: आवाह फोन ने डाउनलोड करवा
10: दिवे बहु के फोन आयुध में शौकर वाफरा तरह खास को दिवे राजा डूंगे लिस्तनी
11: बस वार

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी एकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य चाडूं
1: कानूना कवयतकों मिनिमम कमा असासे हक्को दरक खातेर को दरी किया में बरका
2: कानूना गवायतकों रायी तुंगे सलामता रखा तेरे कंकाशवर को देनी कीने
1: कानूना गवायतक हुरमेतेर कोंगी तंजेहनी कीवे
3: कानून तका गवायतक अहुलवेरवे हेलुं तेरवुमकी कोमे फारुदेगेवेस अमिल रखा तेरे कमशा मुड़ मुझतमाओगे हमजेहुमा नुहान बेनु तेरे कमे
2: कानूना गवायतक गुड़ेगोतुं त्याबे फुलुं बेनु वासुवाल तक जवाब के नेस्तिलमा दिवही राज्य गाडुंगे नेस्तेनी
1: तरह
2: मेहोनीर दोहे गरेगंड नुए जहायरो स्टूडियो इन वगुतु
1: एंहा 7140 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
2: हमे कनी दिवि राज्य गडो
4: मी हकु तिमाया वाहक दक्का मंदारुगा एना एने आ मुखातब को वाहक दक्का आरुगा बस बुनानी अलगंडु कम वानम तिमा कम वानम अनकुन्ना मुखातब को मिबुननी देम्मेतिया विदाळु विये तिमागे नफसम मुखातब कोफा एहेम मीहेगे गातुगा वाहकतके दन्नवणी एकम अनकको तिमागे गातुगा एच्चे बुनायरुगा रीति बहु मिबुननी देम्मेति विदाळु विये अलगंड में अमिल्ल नफसम मी मुखातब कोफा एने गातुगा मिबुननी देम्मेति विदाळु विये
5: दिवसक वीति दिवे बहुगे कवादन एहतराम कुरवा
6: गडिम मेंदमुं अलिवे देगडी तिरिस मी दिवे राज्ये गाडू